ताली तक जुम्मे तक ताली तक जुम्मे तक धलाम तक जुगे तक ताली के नेतू तक नक तक जुम्मे तक नक नक जुम्मे तक नक नक जुम्मे तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जम तारी जग तारी ता के नक नक ता जिन्ने ता जिन्ने ता जिन्ने ता जम तारी जग तारी जाने

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो.

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था, वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई कपि

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

दिल को मैंने दी कसम की न धड़के कभी तेरे बिना। अमाल मालिक, हाँ अमाल मालिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप गीत को सुने। उजाला रेडियो है ये।

मैं नामी लूंगी नजर हटा लो, लता जी की आवाज में इस गीत को आप सुने। और फिल्म का नाम प्यार का मौसम, फिल्म प्यार का मौसम का गीत उजाला रेडियो पर। और अब किशोर कुमार के साथ लता जी, फिल्म जोशीला का गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यार सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं अपनी ही प्रोग्राम में। उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 020-409-0807 या तो हमारा वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। हमारे प्यार सुनो, आज का प्रोग्राम में कुछ मिलजुल संगीत से हम आप सभी को फिर से खिदमत करने वाला हूं और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद भी आएगा।

फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली और लता और सुरेश वरकर जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एक्चुअली इस बार फिल्म का नाम होंगे मैंने प्यार किया। एसपी बालसुब्रमण्यम

वेल यार मेरे मेरे सवालों का जवाब दो ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एसपी सुब्रमण्यम की आवाज में, एसपी बालसुब्रमण्यम यार उन्हीं की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप

0: वेल वेल यार, तेरा जैसा यार कहाँ, तेरा जैसा यार आना कहाँ। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने किशोर कुमार जी के आवाज में। और चलिए यहां पर गाना सुन।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बल ये कहां हम आगे यूं ही साथ चलते चलते। अब बोले कि बता दे यार कि हाँ हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, इधर भी है उधर भी है। और इस तरह से लता एंड अमिताभ बच्चन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, फिल्म का नाम सिलसिला। चलिए अब की बार हमारे प्यारे श्रोता लोग आशा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, फिल्म का नाम उमराव जान।

बलियार इन आंखों की मस्ती में लाखों लाखों हजारों और हैं। और इस तरह से आशा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। आप सभी को आशा है कि ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। एसपी बालसुब्रमण्यम एंड अनुराधा पौडवाल जी के आवाज में

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

अरे यार मेरे जीवन साथी नॉटी बॉय एसमी बालसुमनियम एन अनुराधा पौलवल जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम। चलिए इस बार हमारे प्यारे सुनने वालों अमित कुमार जी के आवाज में तू तक तू तक तू थिया एंड आई लव यू यार।

वल तू तक तूतिया आई लव यू और इस तरह से अमित कुमार जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार। हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है हमारे प्यारे सुनने वालों 9 3 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दया एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत, और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मर्दान सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुनिए फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड दन नोह अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं एंड इंटरेस्ट वक्त को अपने तुलक आनंद चंद्रिका सिंह जिसे हम बात करने वाले हैं नतुलक आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में मार मिशन अंदर ऑन द वेरब जो हम लोग लाने वाले हैं उजाला रेडियो पर.

सयारा नहमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनमल और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार हैं सच्चे माता दिन के वास में सच्चे माता दिन ओक अवेजिंग ऑफ उजालास दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सोमदग 1 नवंबर तू करतवा ना किले बाटे तू जल्दी से किले गेन स्टार्स पास कोटिंग कार्टन वना €15 via

चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नगमा और ये गाना है आकर याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नगमा।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला ला रहे हैं जोंदा 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ टॉक आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैट आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीदना geen staspaskorting टिकट दाम vanaf €15 koop je tickets via meervaart.nl

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं एंड इंटरेस्ट वक्त को अपने तुलक आनंद चंद्रिका सिंह जिसे हम बात करने वाले हैं नतुलक आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में मार मिशन अंदर ऑनलाइन जो हम लोग लाने वाले हैं उजाला रेडियो पर

ऐसा यार नहमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनने वाला, और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार हैं सच्चे माता दिन के वास में। सच्चे माता दिन ओक अवेजिंग ऑफ उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सोमवार 1 नवंबर तू करतवा ना किले बाटे तू जल्दी से किले। Geen staspaskorting, kaarten vanaf €15 via meervaart.

चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नहमा और ये गाना है आक याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नहमा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जैतो स्ट्रांड फ्लीट से श्रीमान मंगरू शिवपाल और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 75 साल की आयु में क्वेफन जेफन तखियार और पति श्रीमान मंगरू शिवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय शिवपाल की मां दो पतो रविता शिवपाल वृंदावन पांडे और नाताशा शिवपाल राम अवतार के सास शेरवेल रहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शेली संजय रायन शयन राजा अयाना अरसेली एंजल अवानी औरोरा आर्यन प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के परनानी और पर आजी अम्स्टर्डम जैतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु अम्स्टर्डम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम जैतो स्ट्रांड फ्लीट से श्रीमान मंगरू शिवपाल और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में क्वेफन जेफन तखियार औत पति श्रीमान मंगरू शिवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय शिवपाल की मां दो पतो रविता शिवपाल वृंदावन पांडे और नताशा शिवपाल राम अवतार के सास शेरवेल रहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शैली संजय रायन शयन राजा अयाना अरसेली एंजल अवानी औरोरा आर्यन प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शाजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम जैतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया और साथ में विदाई लेने के मौका कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 तक मोरखनोक्तन फंती न्यूर्तो 12:12 क्रेमेटोरियम वेस्खाड ओक मेरवेग 275-275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार आप सुनिए, क्रोमनी से बेटी शर्मिला सेवपाल और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फेफन जेफन तखियार और बेटी शर्मिला सेवपाल की माँ शेरवेल शेली और राजा मोहम्मद हुसैन की नानी रहान गफार और संजय नंदलाल की ननिया सास शहजाना जिलानी एजाज गफार और शेरानो और सफीना नंदलाल के परनानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु अम्स्टरडम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। क्रोमनी से परिवार शर्मिला शिवपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 75 साल की आयु में फेफन जेफन तखियार और बेटी शर्मिला शिवपाल की माँ शेरवेल शेली और राजा मोहम्मद हुसैन की नानी रहान गफार और संजय नंदलाल की ननिया सास शहजाना जिलानी और इजाज गफार और शेरानो और सफीना नंदलाल की परनानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और भी दाह क्रिया कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 तक किए जाएंगे। मोरखनोखन फन 3:12 वेस्खाड़े क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

0: गोदान।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से बेटा विनोद सेवपाव और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में फेफन से फेफन तक यार और बेटा विनोद सेवपाल की माँ रायन और शयन सेवपाल के आजी अरिफानो सेवपाल के पर आजी अम्स्टरडम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु अम्स्टरडम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से बेटा विनोद सेवपाल और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फेफन से फेफन तक यार और बेटा विनोद सेवपाल की माँ रायन और शयन सेवपाल के आजी रिफानो सेवपाल के पर आजी अम्स्टरडम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 बजे तक किए जाएंगे। मोरखन फ्रेडाग फन 10 tot 11:30। क्रेमेटोरियम वेस्टगार्डन ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। लेलिस्तान से बेटा राजेश सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फैफन सैफन तखियार और बेटा राजेश सेवपाल की मां पतोर रविता सेवपाल वृंदावन पांडे के सास स्टेफानो अनिशा मलेसा अयाना अरासेली अवानी अरोरा आर्यन और आर्या के आजी लेफी के पर आजी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। लेलिस्तान से बेटा राजेश सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फैफन सैफन तखियार और बेटा राजेश सेवपाल की मां पतोर रविता सेवपाल वृंदावन पांडे की सास स्टेफानो अनिशा मलेसा अयाना अरासेली अवानी अरोरा आर्यन और आर्या के आजी लेफी की पर आजी अम्स्टरडम ज़ुइटोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम ओस्ट में और इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और भी दाह क्रिया कल सुबह किए जाएंगे। कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 बजे तक मॉर्गनोक्तन फन 3 uur tot 11:30 क्रीमेटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और एक और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में आप सुनिए। वूर्दन से बेटा स्टीव शिवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में वैफन जैफन तक यार औत बेटा स्टीव शिवपाल की मां पतो नाताशा शिवपाल राम अवतार के सास एंजल शिवपाल और प्रिंस शिवपाल के आजी आम्स्टरडम जैतो स्ट्रैंडफ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है आम्स्टरडम ओस में, और इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। वूर्दन से बेटा स्टीव शिवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में फैफन सैफन तखियार और बेटा स्टीव शिवपाल की मां पतो नताशा शिवपाल राम अवतार के सास एंजल और प्रिंस शिवपाल के आजी आम्स्टरडम जैतोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है, बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और साथ में दाह क्रिया कल सुबह किए जाएंगे 10 से 11:30 बजे तक मोरखन फ्रेदन फान 3:12 वैसखांड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 020-695-537 020-695-537। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार शिवपाल के दुख में शामिल है।

उजाला ला रहे हैं जोंदा 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ तोह आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैट आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीदना geen staspaskorting टिकट दाम vanaf €15 koop je tickets via meervaart.nl

6:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, दोनदाख आख अक्टूबर, और अब से करीबन रात्रि में 11 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। प्रोग्राम फिर एक बार बनाया जाएगा, सजाया जाएगा और स्टूडियो रोटरडम से मैं रतन राम दुलारे पांडे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से। तीन घंटे का ये प्रोग्राम में कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ साथ दर्द भरे नगमाए, आखिरी घंटे में कुछ से ज्यादा ही पुराने नगमाए आपको हम सुनाएंगे और पहले दो घंटे में हम कुछ द 90s मिलेनियम के बाद जो रिलीज हुए हैं और द 80s का कुछ हसीन हसीन तोहफे, खूबसूरत यादगार म्यूजिक आप तक हम पेश करेंगे। और ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सिनेमा 9 लाख 9 लाख पर आप अवश्य भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ बातें हम कर सकते हैं। और रहे दफ्तर की कार्रवाई, तो मेरे प्यारे सिनेमा लो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप अवश्य तार करें 020-409-0807 या तो किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन, तो आप मेल करें info@ujala.nl। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत है, पॉपुलर सॉन्ग है जो किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तू जरा बता तेरा नाम है क्या।

अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, अनवारों तूने दीवाना इस दिल को बनाया, अब इस दिल पर इल्जाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली ये तो जरा बता कि तेरा नाम है क्या। लाजवाब बेमिसाल नगमा जिसकी अल्फाजी इतनी खूबसूरत है, जिनकी इनकी कविताएं, जावेद अख्तर जी महान राइटर, और इनका ये खूबसूरत नगमा आज हमने ये प्रोग्राम दिल की आवाज का आराम किया है। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज ऑफ कोर्स, और सागर फिल्म का नगमा। मेरे प्यारे सुनो, फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। 8:16 गुजर चुके हैं, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। यूआर के स्टूडियो रोटरडम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है और बहुत सारे एप्स आए सिर्फ एक गीत के अंदर में, तो मतलब ये कि आप साथ दे रहे हैं, तो उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू लिवा देव खोली जी, इनका लिखा हुआ चलो एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाते हैं। ये एक डुएट सॉन्ग है जो द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे, कि ओ मैं तेरा तुम मेरे हो, पेश करता हूं।

कुछ हुआ है, कुछ हुआ क्या पता, चोरी चोरी चुपके चुपके आके ले चले कहां मुझे उड़ के, जानम तेरे दिल को चुरा के ले जाएंगे सीने से लगा के, मैं तेरी तू मेरे हो आशिकी का ये समा है, जो होता है बस होने दो। देवखोली जी इनका लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, राम शास्त्र फिल्म का नाम। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का वेबसाइट www.ujala.nl, ऑफ चेक ऑन द सोशल्स, तू जाने था। अगले गीत महबूब साहब जी का लिखा हुआ एक नगमा है, जिसका बोल है, कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो है तुम, हुस्न ये गजब का अदाएं है कातिल, जैसे कयामत की लुट लुट ही गया है दिल। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत अल्फाजे हैं महबूब जी का लिखा हुआ। तो चलो ये नगमा को आपको हम सुनाते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाजों में।

तेरे नाम से होती है सुबह, ये सुबह आवारा, और तेरे नाम से होती है शाम आवारा। दिन भर तेरा ख्याल तेरे ख्वाबों रातों में, तेरा पागलपन है मुझ पर जाने मन, इतना प्यार करता हूं कि तेरा पागलपन है मुझ पर जाने मन। तो कहते हैं जिसको मोहब्बत वो ही है तुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महबूब जी का लिखा हुआ ये नगमा फ्रॉम द मूवी ग्रहण, अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति जी की खूबसूरत आवाजें। रोमांटिक सॉन्ग सुना रहे हैं तो चलो एक और, अब की बार महान कवि सॉन्ग राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुलजार साहब जी का लिखा हुआ गीत। गुलजार साहब जी बहुत सारी उस हसीन हसीन कविताएं और हसीन हसीन नज़में ये लिखा करते हैं, तो इनका शेर भी बहुत खूबसूरत है। तो कोशिश करता हूं रोजाना एक इनका लिखा हुआ पढ़ने का। फिलहाल तो इनका लिखा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत सॉन्ग जो आप यकीनन पसंद करेंगे, संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें। ये नगमा

लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो, क्योंकि तुम्हारी ये निगाहें बहुत बोलती है। जरा तो अपनी आंखों पे पलके ये पलके जो है गिरा दो, क्योंकि मुझे तो पता चल गया है कि मेरी मंजिल कहां है। अब चलो दिल की ये लंबे सफर पे चलो हम चलें, और ये सफर जब खत्म हम कर देंगे वहीं पर जहां तक तुम्हारे ये कदम भी ले चलेंगे। मोये फिल्में हम देखते हैं, बहुत प्यार होते हैं, प्यार भरे गाना लोग गाते हैं इंडिया के स्वर्ण पार्क में ऑफ आम्स्टरडम से। बॉस नया नहीं, इतना खूबसूरत लगे हम लोगों, इतना बॉलीवुड फिल्म हम लोगों ने देखी ला, मैं अब भी हम ना देख ली कोई के ऐसे पार्क वारक में एक्ट में है ना, कि एगो वीडियो क्लिप खाते एक्ट में ऐसे अपन प्रेमिका लेके मोई गाना मिलकर गावे नाचे कूदे। Dat zou mooi zijn als wij ook die gewoonte hadden. Yetha Gulzar Sahib ji ka likha hua ek khoobsurat romantic song. Aur sangeet ki devi Lata ji aur Mohammad Rafi Sahib ji ki awaazein. Swayamvar film ka naam. Ya assalamu alaikum. Agar aisa hota dan weet ik een paar

दीवानापन ऐसा मुझ पे छाया है, लम्हा लम्हा एक बेचैनी लाया है, और कुछ खोकर भी मैंने तो सब कुछ पाया है। क्यों महके समा क्यों छाया है नशा शबनम के पीने से, और आने लगा मुझे क्यों अब मजा जीने में। ये प्यार है या फिर कुछ और है, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें, और ये था समीर का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी जूली। या मैं इनसे अभी जो हमने जिक्र किया है अच्छा हुसैन, दिल की आवाज में हमारे दिलों में इतने सारे बातें हैं, और बातें बहुत सारे हम छुपाए छुपाए रखते हैं। इसे निकाल कर दिमाग में ले जाओ, जुबान पर ले आओ, कुछ बातें हैं दिल में नहीं रखना चाहिए, दिल की बात हमेशा कह देना चाहिए। एनाल सत्कन अपन हेल मोयो रोमांति समीर गाना गाकर, क्योंकि सभी एक कैनवेन अहमद से नीनित फॉर म्यूजिक हाउर सभी संगीत को पसंद करते हैं, तो हमें जो भी करना है गा गा कर बताना है। मोई सौरत से एक कुमारंग के रूप तुरु कि कितना मोय लगे अगर तू संगीत में किसी से बतिया सके, लेकिन संगीत में भी जवाब आना चाहिए। हाँ, मैं ले चलता हूं इंदवर साहब जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग इनका लिखा हुआ, बहुत सारे नगमाएं अमर है और यकीनन ये भी। और मैं गीत जो है मैं देखता हूं बप्पी लहरी और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे।

आंखों आंखों तुमने ये क्या कहा, दिल ने ये क्या सुन लिया, मैं तुम्हें क्या कहूं ये मुझे नहीं है पता। अली शहजाद जी का लिखा हुआ गीत फिरदौस, राजन की आवाज। ब्यूटीफुल एल्बम है ये, राजन्स एल्बम से निकालकर आज मैंने ये गीत आप तक पेश किया है। 9:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं एकदम लाइव एंड RIQR के स्टूडियो रतनराम से। आपका यारों का यार हूं रतनराम दुलारे पांडे। और दिल की आवाज आज पेश कर रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, आज रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और मत भूलिए आने वाले शनिवार 10 तारीख को भी सेवा में हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और वो भी रात्रि में 7 बजे से टिल मिडनाइट, हाँ 12 बजे रात्रि तक। और अगर मृत्यु समाचार, मौत की खबरें रहा 7 बजे के इश्तिहारों के बाद, तो उन खबरों के बाद हम अपना प्रोग्राम को आराम करेंगे। ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, अगर तेरा चेहरा नजर आए तो, समीर ने लिखा और अपनी खूबसूरत आवाज में अट्टन सामी खान ने गाए हैं गीत।

तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, मेरी जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं तू मेरी जाने जा। तू अगर कह दे मुझे चांद भी ले आऊं जाने जा, एक तारा मांग ले आसमान ले आऊं तेरे लिए जाने जा। क्या बात है, इतना प्यार। ओ बॉय ओ बॉय, समीर का लिखा हुआ ये खूबसूरत अल्फाज है प्यार भरा, और अदनान सामी खान ने गीत को गाए हैं फ्रॉम द एल्बम तेरे या तेरा चेहरा। हाँ जी, कतरीना एट एम्स्टरडम, डंकेवेल आपके ऐप के लिए कतरीना फैन रजाव खस्तम बिन, और आरआरएम में आरएनएम शहर में शारदा भी प्रोग्राम से जुड़े हुए सुन रहे हैं, बहुत बहुत डंकेवेल आपको भी। सुशीला चंद्रिका सिंह जी को भी हम धन्यवाद कहेंगे, ऐताम सिल्फीन, ऐता पुलदूरन, सफूरा सुब्राती जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और मजा ले रहे हैं दनहाग शहर में, लीफ मिक जी दनहल्डर शहर का, इल्स रामदयाल भी चुन किए हुए हैं यू आर उजाला रेडियो पर, और मार्स ब्रुक का हेयर एंड्रू और चित्रा जी भी आनंद ले रहे हैं दिल की आवाज के साथ। मफराव एंड मनेर बिहारी अद्ब्रीता भी चून किए हुए हैं, और आमस्टरडम का आईफी जहांगीर टंकली आलमालवेल, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी के ऐप के लिए, चून करने के लिए, साथ देने के लिए। मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं, फिल्म तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो समीर का ये भी एक लिखा हुआ नगमा है जो अलका याग्निक और उदित नारायण मिलकर गीत गाएंगे।

पहली मोहब्बत का एहसास है ये, और कैसे बताऊं कि ये क्या प्यास है ये, क्यों तड़पने लगा और क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल सजोने लगा, तो जरूर से जरूर कुछ होने लगा। लेकिन पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरा ये हाल, हमारी नींद गई और मेरा चैन जो है भी हमने खोने लगा, तो जरूर से जरूर कुछ होने लगा। समीर ने लिखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, बागबान फिल्म का नाम। निर्मला जी अतल्फना नारायण डंकी वेल, आपके लिए बहुत बहुत डंकी वेल, धन्यवाद।

ओ बॉय, हमारा एक फेवरेट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी इसे पसंद करेंगे। एक रोमांटिक सॉन्ग है जरूर, और महान सॉन्ग राइटर कवि इंदवर साहब जी के कलम से लिखा गया है। नगमा गाएंगे संगीत की देवी लता मंगेशकर जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार।

तुझ संग प्रीत लगाई सजना, वो सजना हो रामा। खूबसूरत प्यार भरा ये रोमांटिक सॉन्ग इंदवर साहब जी का लिखा हुआ, जो हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम कामचोर। मेरे प्यारे सुनने वालों, रोहिणी कल्लू जी आए रोटरडम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, एंजॉय। फैज अनवर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें कि अजब हो तुम जो लेते हो जुबा का काम नजर से

नजर में कैद करके सनम तुम्हें ले जाएंगे जानम, बहुत दिन जी लिए तन्हा ना अप जी पाएंगे कसम से, हो ना जाने लोग क्या समझते हैं नजर की बात क्या है आखिर, अजब हो तुम जो लेते हो जुबा का काम नजर से नजर से। ये रोमांटिक सॉन्ग फैज अनवर जी का लिखा हुआ, मिलकर गीत गाए हैं अलका।

याग्निक और कुमार सानू, राम और श्याम फिल्म का नाम। इवन एट क्लॉक क्या एक और, तो सरे 9:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 11:30। रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं, और रोमांटिक सॉन्ग Even spieken wie dat heeft geschreven. Indwar Sahib ji ne likha. Aaj hi pesh karne ja raha hu. Ki mohabbat ki nazre karam chahta hu. Jagah tera dil mein sanam chahta hu. Honge diwane tere hazaron lekin kaha main kisi se kam hu ye batao. गीत मिलकर गाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों विनोद राठौर और कविता कृष्ण मूर्ति जी। दिल की आवाज है ये, यू आर पर लाइव एंड डायरेक्ट प्रोग्राम पेश हो रहे हैं स्टूडियो रतनम से।

चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। क्या सोच कर करता है इंसान और क्या जाने क्या हो जाता है। ये डट भरा गीत प्रभात ठाकुर जी का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में हमने आप तक पेश किया है, आत्माराम फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, एक आखिरी गीत इस गीत के बाद ब्रेक, और ब्रेक के उस पार थोड़ा सा पुराना नगमाएं सेवा में पेश करेंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी का गाया हुआ ये नगमा से इस घंटे को हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

सपनों का ये शहर हम बनाएंगे घर, और पल भर में ये बना और ये गिरा। घर को बना, डर को सजा, किसके लिए मैं हूं खड़ा, तुम बेखबर, मैं हूं मगर तन्हा परा पत्थर की ये घर। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, सपनों का ये शहर बनाएंगे घर। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रविंद्र पीपत जी का लिखा हुआ, और अपने खूबसूरत डट भरी आवाज में हसीनों के पुजारी किशोर कुमार ने गीत को गाकर सुनाया। फिल्म का नाम एहसास। और घड़ी की तरफ मैं देखू, यहाँ फिर 3 मिनट हो फॉर द क्लॉक फन, 3:14 मिनट गुजर चुके हैं 10:11 बजे तक आपका साथ हम देंगे लेकर ये प्रोग्राम दिल की आवाज। डर भरा एक और पॉपुलर सॉन्ग आप तक पेश कर रहा हूं। डर भरे गीतों में एक ऐसा गीत है ये कि फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे और जीता भी। द ग्रेट हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है, और द लेजेंड पटमाश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़।

कल तेरी जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं तो कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठाकर और यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर रखूंगा। मैं दिल के पास मेरी जान मत हो उदास। हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये ग्रेट सॉन्ग, डर भरा गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। एक फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ नगमा आप तक हमने पेश किया है, जिसे सिवार मेरे प्यारे सुनने वालों 8 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में और बारिश हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं जब बारिश हो रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा नगमा पेश किया जाए प्यार भरा, जो इस रात्रि में सूट करते हैं। मैं देखता हूं गीत गाने वाले हैं लता जी और किशोर कुमार। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ

आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, और कजरा गजरा बह जाए गारी बरसात में। होश में से सनम, होश से काम लो, राम का नाम लो तो थाम लो। जाने बैरन रुत क्या करे, और रिमझिन मेरी तन पर ये पानी गिरे, मन में लगे बस आग सी। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गोल्डन ओल्डी रोमांटिक सॉन्ग, संगीत की देवी स्वयं सरस्वती माँ लता जी की आवाज, और हसीनों का बादशाह, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, जैसे को तैसे फिल्म का नाम। लक्ष्मण जी आयत स्खीवनिंग डंग के वाला आपके लिए, लक्ष्मण जी आपने चुन किए हुए बेहद खुशी है हम, और आप तो जानते हैं लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एक गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और मैं पेश करने जा रहा हूं। अब की बार लता जी अकेले ही गाएंगे, और ये नगमा डट भरे गीत में गिना जाता है और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। पेश करता हूं

सयार नहमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनवाला, और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार हैं सच्चे माता दिन के वास में। सच्चे माता दिन ओक अवेजिंग ऑफ उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सोमवार 1 नवंबर तू करतवा ना किले बाटे तू जल्दी से किले। Geen staspaskorting, kaarten vanaf €15 via meer

चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नामा और ये गाना है आकर याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नामा।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो